ऑफिस के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है, सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी पुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते लेने हाजिर थी गया हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो बहन बोनो आज हमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नो विषय है कि जैविक उर्वरक अपने हरते तैयार करो ने आनु हूँ महत्व है। तो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी आप तक घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आप हम इन पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको विषय से रूबरू कराया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ बचपन को लेकर। तो श्रोता साथियों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं से ढेर सारी बातों को, फिर आगे हमारी बातें हम जारी रखेंगे। सर नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक द्विवेदी, पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ, वागड़ पर्यावरण संस्थान का अध्यक्ष हूँ।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और हम देख रहे हैं कि सितंबर माह जो है वो हम पोषण के तौर पर मनाते हैं। आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि पोषण और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि पोषण और पर्यावरण का आपस में संबंध क्या है।
1: जी, पोषण

0: पर्यावरण की बात करें तो इनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। पर्यावरण की बात करें यदि हम, तो स्वच्छ पर्यावरण से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। स्वच्छ पर्यावरण से ही हमें शुद्ध भोजन, पानी और पोषक तत्व, जल वगैरह, ये सारी चीजें मिलती हैं। और यदि वातावरण में गिरावट आती है तो ये हमारे पोषण को और हमारी हेल्थ को, हमारी स्वास्थ्य को बहुत सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अच्छा, पर्यावरण से हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो भी जुड़ा हुआ है। हमारी जो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इसको उगाने के लिए हमको अनुकूल वातावरण तो चाहिए ही। उपजाऊ मिट्टी, पानी और ये जलवायु की अनुकूलता, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और यदि पर्यावरण के प्रदूषण होने से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर यदि कोई प्रभाव पड़ता है, खाद्य सुरक्षा पर संकट आता है, तो इसका सीधा असर जो है हम सभी के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जैसे हम बात करें हमारे खेती बाड़ी की और पोषक तत्वों की, तो यदि पर्यावरण प्रदूषित है तो मिट्टी की उर्वरता, जो हम खास करके हमारी फसलों पर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो छाड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पोषण जो तत्व हैं उनको घटा देती है। अच्छा, इसके अलावा पर्यावरण की चर्चा करें तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ सीधा विषय है जैसे अकाल, सूखा, बाढ़, ये तमाम चीजें, और अभी जलवायु परिवर्तन का दौर है।
1: बिल्कुल,
0: अधिकतम जो हमारा तापमान है वो भी हमारे फसल चक्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। यदि बाढ़ आती है तो सभी चीजों को बहा ले जाती है, उसमें मिट्टी का जो पोषण है, मिट्टी की जो उर्वरता है, वो भी समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का पोषण से बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है।
1: बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को यहीं बताई है। यहीं अब मैं जानना चाहूंगी कि प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है।
0: देखिए, प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों पर होता है, और विशेष करके यदि हम बच्चों की बात करें तो ये उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। कहीं न कहीं प्रदूषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो वो बहुत प्रभावित होती है। यदि यदि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ है तो उसको बार बार सर्दी जुकाम होगा, निमोनिया होगा, एलर्जी हो जाएगी। जैसे प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं तो जैसे जल का प्रदूषण है, वातावरण का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। जैसे हम ध्वनि प्रदूषण की चर्चा करें, बच्चा यदि बहुत ज्यादा पटाखे छोड़े जा रहे हैं उसके आसपास है, तो उसकी आंखों में जलन होना, उसका सुनने की जो क्षमता है, उसके कान सीधे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो है वो, जैसे आजकल गाड़ियों का शोर बहुत ज्यादा है, तो ये भी बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। गाड़ी के हॉर्न, गाड़ी का धुआं, धूल, मिट्टी, ये तमाम जो चीजें हैं वो बच्चे को प्रभावित करती है, और ये पूरा श्वसन संबंधी इससे समस्याएं पैदा होती है। खास करके अस्थमा है, हवा में सांस लेने से बच्चों में अस्थमा, खांसी, घबराहट, ये सारी चीजें उस पर हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डालता है, और बच्चा फोकस्ड नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या यह थी, बच्चा फोकस नहीं रह पाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही जानना चाहूंगी कि सुरक्षित पानी क्यों हमारे लिए जरूरी है।
0: पानी तो मतलब, जल तो हमारा जीवन है, हम जल को, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और पानी यदि सुरक्षित नहीं है तो ज्यादातर जो हमारी बीमारियां होती है वो पानी से ही होती है। दूषित पानी से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैजा, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, ये सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं। और यदि पानी सुरक्षित है तो ये हमारा जो शरीर है उसके टेम्परेचर को बहुत नियंत्रित करता है। खास करके गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि हमें बहुत पसीना होता है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो सुरक्षित और स्वच्छ पानी यदि हम बार बार पी रहे हैं तो हमारा ये तापमान, शरीर के अंदर के तापमान को भी कंट्रोल करेगा, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। और खास करके यदि हम कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो हमें स्वच्छ और सुरक्षित पानी बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर।
0: और हमें हमारे शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में और बार बार पानी पीना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पानी क्यों जरूरी है इसको लेकर हमें बहुत अच्छी बात से अवगत करवाया है। यही हम देखते हैं कि गंदे वातावरण में रहने से कई सारी बीमारियां हो जाती है, तो कौन कौन सी बीमारियां हमें गंदे वातावरण में रहने से होती हैं?
0: देखिए, गंदा वातावरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहे शहर हो या गांव हो, ये गंदा वातावरण इससे बचा हुआ नहीं है। और गंदे वातावरण से डायरिया एक बहुत आम बीमारी है, टाइफाइड हो जाता है, जो कि गंदे पानी से ही होता है, दूषित खान पान से होता है, पीलिया बीमारी वैसे तो बहुत छोटी बीमारी कही जाती है, लेकिन ये सीधा इसका असर लीवर पर होता है और लीवर डैमेज होने से कई बार आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ये अस्थमा, श्वास रोग, ये भी सारी धूल कचरा, ये कहीं ना कहीं गंदे वातावरण से ही ये सारी बीमारी, संक्रमण हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हमें गंदे वातावरण से हो जाती हैं।
1: जी हाँ, यही जरा मैं जानना चाहूंगी कि स्वच्छ रसोई भी पोषण का हिस्सा है।
0: देखो, जो हमारी रसोई है यानी कि वो एक प्रकार से उसका स्वच्छता से बिल्कुल सीधा संबंध है। जहाँ हमारी माँ, हमारी बहन घर में जहाँ खाना बन रहा है, खाना पकाते हैं, वहां पर यदि स्वच्छता नहीं हो तो ये बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। यदि स्वच्छता नहीं होगी तो मक्खी, मच्छर, ये तमाम चीजें होंगी। हालांकि स्वच्छता का मतलब सीधा संबंध विटामिन प्रोटीन से नहीं है, लेकिन स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिकता से भी है। हम किसी अस्वच्छ जगह पर यदि जाते हैं जहां पर मक्खियां भिनभिना रही हो तो ये सीधा हमारे मानसिकता पर असर डालेगा। इसके अलावा हमारे जो घर में जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, यदि हम खाना पका रहे हैं तो इन सारी चीजों को धोकर के काम में लेना, इस स्वच्छता का भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। और खास करके हमारी रसोई गंदी है, गंदे बर्तनों में यदि खाना बन रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर डालते हैं और पोषक तत्वों को दूषित करके हमको बीमार करते हैं। तो ये स्वच्छ रसोई होगी तो हमारा बीमारियों से बचाव होगा, हमें फूड पॉइजनिंग से हमारा बचाव होगा, डायरिया से, पेट की बीमारियों से, तो वायरस बैक्टीरिया ये हम पे असर नहीं डालेंगे।
1: बिल्कुल, जैसा कि सर आपने बताया कि हमारी रसोई का स्वच्छ होना किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि रसोई से भी पोषण का हिस्सा जुड़ा हुआ है। यही बात आती है कि भोजन को सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या है।
0: देखिए, भोजन को सुरक्षित रखने के बहुत सारे उपाय हैं और उन उपायों की बात करें तो सबसे पहले तो उसमें आता है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो करके भोजन के सुरक्षा के, पहले हमारी स्वच्छता और फिर भोजन की सुरक्षा, हम अच्छे बर्तन धो करके, हाथ धो करके हमारा जो भोजन है उसको बर्तन में निकाले करें और उसको व्यवस्थित तौर पे सफाई वाली जगह पे रखें और उसको ढक के रखें। मतलब भोजन को ढक के रखना बहुत आवश्यक है और भोजन जब हम कर रहे हैं तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक लेवल तक वो गर्म खाना हो, क्योंकि ठंडा भोजन भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर करता है। और यदि गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको भोजन को 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद हमको फ्रिज में रख देना चाहिए। और यदि घर में फ्रिज नहीं है तो हवा वाली जगह पे जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, इस चीज को भी हमको बहुत ध्यान रखना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, यही अब जानना चाहूंगी कि खुले में रखा गया जो भोजन है वो किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है।
0: देखिए, आए दिन हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि विवाह में भोजन से बीमारियां हो गई, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोगों को दस्त उल्टी हो गए, ये सारी चीजें, मेले में खुले में भोजन करने से या खुले में नाश्ता करने से फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो खुले में भोजन रखने से तो बिल्कुल हमको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। यदि भोजन खुले में पड़ा होगा तो मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगे, धूल, ये सारी चीजें भोजन को प्रभावित करेंगी और इससे फूड पॉइजनिंग होगा, पेट में संक्रमण होगा, उल्टी दस्त होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इससे बैक्टीरिया भी बहुत तेजी से फैलता है, सूक्ष्म जीव जो हमको दिखाई नहीं देते उससे शरीर को नुकसान होता है। और इससे खुले में भोजन रखने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, उसका स्वाद नष्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि हाथ धोने की आदत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम कई बार लापरवाही कर देते हैं, तो ये क्यों जरूरी है?
0: देखिए, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये कहना पड़ता है कि हाथ धो करके भोजन करना चाहिए, ये कहना पड़ता है कि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, इसके लिए अभियान चलाया जाता है। सचिन तेंदुलकर जैसी सेलिब्रिटी जो है वो हाथ धोने का विज्ञापन करती है, तो ये चीजें जो है वो हमारे डीएनए में समा जानी चाहिए कि हमें भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, पानी पीने से पहले अच्छी तरह से हाथ को धोना है, ये हमारी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर में हम इधर उधर बहुत सारी जगह पर घूमते हैं तो हमारे हाथों में संक्रमण हो जाता है, और कई बार जब हम जैसे टेबल पे काम कर रहे हैं तो टेबल को कई बार हमारी एक आदत हो गई कि हाथ से हम टेबल को साफ कर लेते हैं, और उसी हाथ से यदि हमने नाश्ता कर लिया, उसी हाथ से हमने भोजन कर लिया, तो ये सारी चीजें हमारे पेट के अंदर जाएंगी और कहीं ना कहीं ये हमको बीमारियां कर देंगी। तो हाथ धोना यानी कि ये बीमारी से बचने का सबसे सस्ता और बहुत आसान उपाय है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम जान पाए कि हाथ धोने की आदत क्यों जरूरी जी, है जी, यही जी। अब मैं जानना चाहूंगी स्वच्छ गांव और स्वस्थ बच्चों का क्या संबंध है?
0: हाँ, स्वच्छ गांव और स्वस्थ बच्चा, देखो गांव स्वच्छ रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। गांव की सफाई बहुत आवश्यक है। हम प्रायः देखते हैं गांव में पशु पालक होते हैं, गांव में लोग खुले में आज भी शौच जाते हैं, गांव में घर के आंगन में घास फूस होती है, घर के आंगन में गंदगी होती है, तो ये बच्चे पे सीधा असर डालती है। तो गांव स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है, और गांव की स्वच्छता से सबकी स्वच्छता, और विशेष करके वो बालक जो अभी अबोध है, जो जानता नहीं है, जो समझता नहीं है कि मैं कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे को क्या असर पड़ेगा, मैं यदि जो है वो कहीं गंदे पानी में खेलूंगा तो इस पर मुझे क्या, कई बार बच्चा जो है गंदे पानी से भी खेल लेता है, गंदा पानी भरा रहता है, गड्ढे होते हैं, तो इन सारी चीजों का उसके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए गांव का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, यही अब अगला सवाल है मेरा कि हम पर्यावरण को लेकर, पोषण को लेकर बात कर रहे हैं, तो परिवार क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं ताकि ये दोनों चीजों का जो संबंध है वो संतुलित तरीके से बना रहे?
0: देखिए, परिवार बहुत छोटे छोटे कदम उठा सकता है, और इसमें माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों को बार बार यह जानकारी देवे कि हमें ढका हुआ भोजन करना चाहिए, हमें हाथ धो करके, हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ करके भोजन करना चाहिए, हमें भोजन करते समय साफ जगह पर बैठना है, हमें होटल में कुछ भी नाश्ता करने से, या ऐसी होटल जो बहुत गंदगी है, जहाँ बहुत गंदगी है, ऐसी जगहों पर जा करके कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए, हमें फास्ट फूड से भी बचना है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पोषक तत्वों को नष्ट करता है, और पेस्टिसाइड्स वगैरह ये तमाम जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में भी ध्यान रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
1: जी सर, यही स्कूल और आंगनबाड़ी की क्या भूमिका हो सकती है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्कूल और आंगनवाड़ी पोषक तत्वों के मामले में बहुत बड़ी भूमिका में है। आंगनवाड़ी वो जगह है जहाँ माँ और बच्चा दोनों की उपस्थिति रहती है। बच्चा जो है वो 6 महीने के बच्चे से लगाकर 6 वर्ष तक का बच्चा जो है गांव में आंगनवाड़ी में रहता है, और यहाँ पर उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है, न सिर्फ बच्चे के बल्कि माँ के बच्चे का। गर्भवती महिलाएं भी वहाँ पर जाती हैं, उनको वहाँ पर पौष्टिक आहार वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती, पौष्टिक आहार दिया भी जाता है, और वहाँ पर समय समय पर जो स्वास्थ्य विभाग से बिल्कुल संपर्क रहता है, और वहाँ पर बच्चों को और माताओं को टीकाकरण किया जाता है समय समय पर। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के 6 महीने से लगाकर 6 वर्ष तक के, तो इनको वहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है, खेल खेल में उनको बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। अच्छा, माताओं का जो स्तनपान है, उचित खान पान है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता है, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी में सिखाई जाती है। तो एक प्रकार से माँ और बच्चा हॉस्पिटल नहीं जाए तो आंगनवाड़ी एक प्रकार से मिनी हॉस्पिटल का काम करती है। जहां तक स्कूल की चर्चा करें तो स्कूल में मिड डे मील व्यवस्था है, बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, और वो जो भोजन है वो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए उसमें कि उसमें पोषण युक्त भोजन हो, गर्म भोजन हो, और बच्चा यदि वहां पर स्कूल में भोजन कर रहा है, पोषण तत्व है उसमें, बच्चे का उस भोजन के प्रति आकर्षण है, तो वहां पर एक फायदा यह भी है कि बच्चे की उपस्थिति स्कूल में बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे की उपस्थिति बढ़ेगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये असर पड़ेगा कि बच्चा शिक्षा की ओर प्रेरित होगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, ये हम सभी समझते हैं। जैसे जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें संतुलित आहार का ज्ञान दिया जाता है, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बातें बताई जाती हैं। अच्छा, स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य की जांच भी होती है, समय समय पर शिविर लगते हैं, वहां पर नर्स आती है, डॉक्टर्स आते हैं, आंखों की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, ये सारी चीजें जो है वो नियमित तौर पर स्वास्थ्य की जांच होती है। तो स्कूल और आंगनवाड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि पोषण और पर्यावरण को लेकर हमने ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जानी, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं श्रोताओं को विशेष तौर पर यह बात बताना चाहूंगा और खास करके मतलब बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में कि हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ पर स्वस्थता है। स्वच्छ है व्यक्ति तो वो स्वस्थ है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि हम हमारी काया को निरोगी रखना चाहते हैं तो स्वच्छता को हमें अपनाना होगा। और दूसरा पोषण तत्वों के बारे में हमने ढेर सारी बातें कही, लेकिन संक्षेप में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो पोषण युक्त हो, बासी भोजन नहीं हो, और हम फल का, दालों का, सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि हमारा शरीर और खास करके नई पीढ़ी को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए वो हमको उस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि बच्चा यदि स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं परिवार में स्वच्छता का एक वातावरण बनेगा। परिवार में स्वच्छता का वातावरण इसलिए आवश्यक है कि परिवार में बीमारियां फैलेंगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करेगा, और हम उसी बीमारियों से घिर करके रह जाएंगे और परिवार का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। तो यही संदेश है कि पोषण तत्वों का ध्यान रखें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े थे, और आज की बातचीत से एक बात साफ होती है कि पोषण केवल थाली में मौजूद भोजन का नाम नहीं है। स्वच्छ पानी, साफ हाथ, सुरक्षित भोजन, स्वच्छ रसोई और स्वस्थ वातावरण, ये सभी बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की नींव है। तो श्रोता साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छी तरह पढ़ें और बीमारियों से बचे रहें, तो हमें उनकी थाली के साथ साथ उनके आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। घर में साफ पानी रखें, भोजन को ढककर रखें, रसोई को स्वच्छ रखें, खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ जरूर धोएं और अपने आसपास कचरा न जमा होने दें। ये छोटे कदम बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में बड़ी शुरुआत बन सकते हैं। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि पौष्टिक भोजन के साथ स्वच्छ वातावरण, तभी होगा बच्चों का बेहतर पोषण और स्वस्थ बचपन। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, स्वयं को जानना भी एक सफर है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब हम जीवन की बात करते हैं तो अक्सर हम सफलता, रिश्तों और बाहरी उपलब्धियों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूट जाती है कशिश, और वो है स्वयं को जानना।
0: बिल्कुल,
1: ये एक ऐसा सफर है श्रोताओं जो किसी मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा खुद को समझने और स्वीकारने की यात्रा है। ये सफर आसान नहीं होता श्रोताओं, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थों में बदल जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम साथियों को पहले गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना दोस्तों को पहले कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल

0: बचाने से क्या होगा, मेरे एक पौधा लगाने से क्या बदलेगा, मेरे कचरा न जलाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन श्रोताओं, बदलाव हमेशा एक कदम से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति से परिवार बदलता है, एक परिवार से मोहल्ला बदलता है, एक मोहल्ले से गांव बदलता है, और जब गांव बदलते हैं तो समाज बदलता है। और यही सच्चे स्वराज की ताकत है।
1: बिल्कुल।
0: ओजोन परत की रक्षा केवल आसमान की सुरक्षा नहीं है श्रोताओं, ये धरती के जीवन की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हम ऐसा स्वराज बना सकते हैं जिसमें विकास के साथ प्रकृति भी सुरक्षित रहे, खेतों के साथ मिट्टी भी सुरक्षित रहे, गांव के साथ जंगल भी सुरक्षित रहे, और आज के साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। क्योंकि धरती सुरक्षित होगी तभी जीवन सुरक्षित होगा, प्रकृति सुरक्षित होगी तभी गांव सुरक्षित होगा, और जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ओजोन परत की रक्षा करें, पर्यावरण बचाएं और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं।
0: जी हाँ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनु अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वो है निराशा। साथियों, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारे सपने दूर लग रहे हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल क्षणिक भावना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे भीतर ही है। जब अंधेरा गहरा होता है दोस्तों, तो खुद पर भरोसा रखो, सूरज फिर उगेगा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे आए। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे पास सही मार्गदर्शन भी नहीं होता। लेकिन साथियों, निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह केवल हमें सोचने और सुधारने का संकेत देती है। असफलता केवल मार्गदर्शक होती है साथियों, लेकिन निराशा स्थायी नहीं होती। साथियों, ध्यान दीजिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर भी तो आता है ना। कभी कभी ना साथियों, हम बहुत छोटे परिणामों से निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों, एक बात बताइए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे? यह सोच कर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यही मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों, रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों, ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारी असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग को अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है? अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने के बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कम मत आंको और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिरकर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल असर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास दिख ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

साथियों, आज हमने जाना कि निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना हमारे ही हाथ में है। जब हिम्मत और प्रयास साथ हो तो निराशा कभी स्थायी नहीं होती। इसलिए याद रखिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर आता है। इसलिए निराशा में डूबने के बजाय एक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी संदेश के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaagdhra.org, radio@vaagdhra.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय हमारे जीवन से जुड़े एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: नमस्कार साथियों आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है ओजोन दिवस का महत्व हमारी धरती की सुरक्षा की ढाल को लेकर।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हम भी जानते हैं कि आज का दिन हमें आसमान की ओर देखने और एक ऐसी अदृश्य सुरक्षा का ध्यान देने का अवसर देता है जिसके बिना धरती पर जीवन का संतुलन बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: बिल्कुल,
1: हम बात कर रहे हैं ओजोन परत की। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हमारी धरती को कई तरह की प्राकृतिक सुरक्षा दी है।
0: बिल्कुल,
1: और ओजोन परत उनमें से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना दोस्तों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं ओजोन दिवस को लेकर। तो अंजलि जी, अगर यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि ओजोन होता क्या है, तो श्रोता साथियों, ओजोन एक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, यानी कि इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। वायुमंडल में ओजोन अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी की सतह से लगभग कह सकते हैं कि 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में मौजूद ओजोन की परत हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: इसे दोस्तों हम ओजोन परत ही कहते हैं। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों, विशेषकर UVB किरणों के एक बड़े हिस्से को अवशोषित करती है। यदि ये किरणें बड़ी मात्रा में सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचे तो मनुष्य, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। अंजलि जी,
1: जी हाँ,
0: इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि ओजोन परत की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें जो किरणें देती है उसमें यूवी किरणें होती हैं, जो कि कुछ ऐसी किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा देती है।
0: बिल्कुल,
1: वो जो ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ऑक्सीजन के एक अणु में सामान्यतः 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, जबकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से O3 कहा जाता है। हमारे वातावरण में ओजोन अलग अलग ऊंचाइयों पर मौजूद होती है। धरती की सतह के पास मौजूद ओजोन अधिक मात्रा में हो तो यह वायु प्रदूषण का हिस्सा बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वायुमंडल की ऊपरी परत में मौजूद ओजोन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: जी हाँ,
1: इससे ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र में कशिश ओजोन की अधिक मात्रा वाला हिस्सा ओजोन परत कहलाता है।
0: बिल्कुल,
1: सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, लेकिन सूर्य से आने वाली किरणों में कुछ ऐसे पराबैंगनी किरणें भी होती हैं जिन्हें पराबैंगनी किरणें या यूवी किरणें कहा जाता है।
0: जी जी,
1: इनमें से यूवी किरणें जीवन जगत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ओजोन परत पर इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों के एक बड़े हिस्से को अवशोषित कर धरती पर उनके प्रभाव को कम करने की शक्ति होती है। इसलिए से हम सरल शब्दों में धरती के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। अगर यह सुरक्षा कमजोर हो जाए तो मनुष्य और पशु पक्षी, पेड़ पौधों और समुद्री जीव सहित पूरे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, अब सवाल ये उठता है श्रोता साथियों कि आज के दिन को विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि 16 सितंबर 1987 को दुनिया के देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे।
1: बिल्कुल,
0: इसका उद्देश्य उन रासायनिक पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना था अंजलि जी, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। बाद में श्रोता साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने आज के दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि यह दिन केवल किसी एक समस्या की याद दिलाने वाला दिवस नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उस मिसाल को भी सामने लाता है जिसमें अलग अलग देशों ने मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए थे।
1: बिल्कुल कशिश, यही बात करें तो श्रोता साथियों, अब सवाल ये आता है, ये जो दिवस हम मनाते हैं ओजोन परत, ये क्यों मनाया जाता है। तो श्रोता साथियों, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था, जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है और जिसके माध्यम से यह दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: एक समय पर कशिश कुछ औद्योगिक रसायनों का उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशनर, एरोसोल और दूसरी चीजों में बड़े पैमाने पर किया जाता था। इनमें से कुछ रसायन ऐसे थे जो वातावरण में पहुंचकर ओजोन अणुओं को नुकसान पहुंचा सकते थे।
0: बिल्कुल,
1: इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCs प्रमुख थे। जब ये पदार्थ ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचते हैं तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसके प्रभाव से उनसे ऐसे रासायनिक तत्व निकल सकते हैं जो ओजोन को तोड़ने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे ओजोन परत के कमजोर होने की चिंता पैदा हुई। यही कारण है कि दुनिया के देशों ने मिलकर ऐसे पदार्थ के उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, हम जैसा कि विश्व ओजोन दिवस को लेकर ढेर सारी बातें कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि ओजोन परत दिवस को लेकर गीत से पहले भी ढेर सारी बातें हम कर रहे थे अंजलि जी, यही अगर हमारे साथियों को हम बताएं तो ये दिन केवल किसी एक समस्या की याद दिलाने वाला दिवस नहीं है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उस मिसाल को भी सामने लाता है जिसमें अलग अलग देशों ने मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाए थे।
1: जी हाँ,
0: हम जैसा कि जानते ही हैं कि एक समय ऐसा आया था जब वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी के संकेत देखे थे। इसके पीछे श्रोता साथियों कुछ मानव निर्मित रसायनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनमें अगर हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, हेलोन और कुछ अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ शामिल थे साथियों। इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल और अलग अलग औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता था।
1: बिल्कुल,
0: जब ये पदार्थ वायुमंडल की ऊपरी परत तक पहुँचते हैं अंजलि जी, तो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से इनमें से क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे तत्व मुक्त हो सकते हैं। ये तत्व ओजोन अणुओं को तोड़ने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसी प्रक्रिया के कारण ओजोन परत के क्षरण की समस्या सामने आई।
1: बिल्कुल कशिश, पर्यावरण की समस्या किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रही। हवा एक देश से दूसरे देश तक जाती है, वातावरण पूरी धरती से जुड़ा हुआ है, इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा भी किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस बात का उदाहरण है कि जब अलग अलग देश किसी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर मिलकर काम करते हैं तो सकारात्मक बदलाव संभव है। इस समझौते के तहत ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कई पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से काम कम किया जा सकता है। ओजोन दिवस इसलिए सिर्फ एक पर्यावरण दिवस नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। अगर श्रोता साथियों, हानिकारक यूवी किरण का धरती तक पहुंचने की जो चीजें हैं वो बढ़ती है तो मानव स्वास्थ्य पर कई तरीके के खतरे देखने को मिलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अत्यधिक यूवी किरण से हम देखते हैं कि त्वचा और आंखों पर नुकसान का जोखिम बढ़ सकता है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है, इसके साथ ही पर्यावरण पर भी असर पड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: पेड़ पौधों की कुछ प्रजातियां, कृषि उत्पादकता, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और छोटे जलीय जीव भी यूवी विकिरण में बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ओजोन परत की रक्षा केवल आसमान की रक्षा करना नहीं है बल्कि जीवन के पूरे तंत्र की सुरक्षा करना है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन परत की बात हमारे गाँव और खेती से कैसे जुड़ती है।
0: जी जी।
1: तो श्रोता साथियों, पर्यावरण का कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग नहीं है। हमारा किसान मौसम, पानी, मिट्टी, धूप और प्रकृति पर निर्भर करता है।
0: बिल्कुल,
1: खेती के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है लेकिन प्रकृति में हर चीज का संतुलन उतना ही जरूरी है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा की चर्चा केवल बड़े शहरों या वैज्ञानिक प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसकी जानकारी हमारे गांव के हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आसमान में दिखाई न देने वाली ओजोन परत भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों कल्पना कीजिए कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के पास कोई प्राकृतिक सुरक्षा न हो। इन किरणों की अधिक मात्रा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होगी अंजलि जी। इससे त्वचा संबंधित समस्याओं, आंखों को नुकसान और प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा अत्यधिक यूवी विकिरण पेड़ पौधों, कृषि फसलों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से अंजलि, समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोकैप्टिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है और पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए साथियों ओजोन परत की रक्षा केवल इंसानों की रक्षा करना नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो श्रोता साथियों, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर सरकारों, उद्योगों और वैज्ञानिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आम नागरिक भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकता है।
0: जी हाँ।
1: पुराने रेफ्रिजरेटर, AC की सही सर्विस करवाएं, उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों का गलत तरीके से रिसाव पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए प्रशिक्षित तकनीशियन से ही सर्विस करवाना बेहतर है। जरूरत न होने पर पंखे, लाइट, AC और दूसरे उपकरण बंद करें। ऊर्जा की बचत पर्यावरण दबाव कम करने में मदद करती है। पेड़ वातावरण के संतुलन और स्थायी पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बच्चों को सिर्फ यह न बताएं कि पेड़ लगाना चाहिए बल्कि यह भी समझाएं कि हमारा वातावरण कई परतों और प्रक्रियाओं से मिलकर बना है।
0: बिल्कुल,
1: ओजोन, जलवायु और प्रदूषण जैसे विषयों पर सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी की बजाय वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों कि ओजोन छिद्र होते क्या है, तो आपने अक्सर समाचारों में ओजोन छिद्र शब्द सुना होगा।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, ओजोन छिद्र का अर्थ ये नहीं है कि आकाश में वास्तव में कोई गोल छेद बन गया है, बल्कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ओजोन की मात्रा सामान्य स्तर की तुलना में बहुत कम हो जाती है।
1: जी जी
0: अंजलि जी, अगर हमारे साथियों को हम बताएं तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में मौसमी कमी विशेष रूप से देखी गई है। इस घटना ने दुनिया के वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं को चिंतित किया है और इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई को भी बढ़ा दिया गया है।
1: बिल्कुल,
0: अब साथियों बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जिसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से देशों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों उत्पादन और खपत को धीरे धीरे कम करने और समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।
1: बिल्कुल,
0: इस समझौते को समय के साथ कई बार मजबूत भी किया गया और वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी विकास के अनुसार इसमें बदलाव भी किए गए।
1: जी हाँ,
0: इससे जागृति, इससे अंजलि जी हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सीख हमें मिलती है। जब दुनिया के देश किसी साझा पर्यावरणीय समस्या पर मिलकर काम करते हैं तो सकारात्मक बदलाव संभव हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि हम कार्यक्रम में ढेर सारी बातों को जान रहे हैं, आगे भी ये बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ओजोन दिवस को लेकर ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही कशिश श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि ओजोन दिवस हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। प्रकृति की सुरक्षा केवल प्रकृति के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए है। हम अक्सर पर्यावरण की समस्या को बहुत बड़ी समस्या मानकर सोचते हैं कि इसे केवल सरकार या वैज्ञानिक ही हल कर सकते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमारी छोटी छोटी आदतों से भी होती है।
1: बिल्कुल,
0: बिजली की बचत, सही तरीके से उपकरणों का रखरखाव, पेड़ पौधे की देखभाल, प्रदूषण कम करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना, ये सभी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो श्रोता साथियों, आपको यहाँ पर एक बात समझनी ये भी जरूरी है कि ओजोन परत का क्षरण और जलवायु परिवर्तन एक ही समस्या नहीं है, लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। कुछ ओजोन क्षयकारी पदार्थ और स्वयं शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को नियंत्रित करने से ओजोन परत की रक्षा के साथ साथ जलवायु को भी लाभ मिलता है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि 2016 में अपनाया गया किंगाली संसाधन एसटीएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर केंद्रित था, जिसमें श्रोता साथियों ओजोन परत को सीधे नष्ट नहीं करते थे, लेकिन इनमें से कई शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी थी। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के अलग अलग मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एक सवाल है कि क्या ओजोन परत में सुधार हो रहा है, तो ये एक आशा को जगाता है। जैसे कि वैज्ञानिक आंकलनों के अनुसार अंजलि जी, ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर वैश्विक कार्रवाई के कारण ओजोन परत के दीर्घकालिक पुनर्सुधार के संकेत मिले हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि वर्तमान वैश्विक रणनीतियां और प्रतिबद्धताएं जारी रहेंगी तो वैज्ञानिक आंकलनों में ओजोन परत को धीरे धीरे पहले के स्तर की ओर लौटने की संभावनाएं बताई जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई। साथियों, हमें अभी भी ओजोन क्षयकारी पदार्थों के नियमों का पालन करना होगा, पुराने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग उपकरणों को जिम्मेदारी से निपटाना होगा और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को भी बढ़ावा देना होगा।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। आज जब हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मना रहे हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए पर्यावरण की बात न करें।
1: बिल्कुल,
0: अपने घर में बच्चों से बात करें, गांव में लोगों से चर्चा करें, स्कूल में विद्यार्थियों को समझाएं और यह याद रखें कि आसमान में मौजूद ओजोन परत भले हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में दिखाई देता है। हमारी धरती सिर्फ हमारी नहीं है, या आने वाली पीढ़ियों की भी है।
1: जी जी।
0: ओजोन दिवस हमें धरती और इंसान के बीच उस सृष्टि की याद दिलाता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी सांसों की हवा, खेत की मिट्टी, पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी और आसमान, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक हिस्से में बड़ा बदलाव आता है तो उसका प्रभाव दूसरे हिस्से पर भी पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ओजोन परत हमारी धरती के वायुमंडलीय सुरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे बचाने के लिए दुनिया ने मिलकर प्रयास किए हैं कशिश, और उन प्रयासों से यह संदेश मिलता है कि पर्यावरण की बड़ी समस्याओं का सामना ज्ञान, विज्ञान और सामूहिक जिम्मेदारी से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आज ओजोन दिवस पर हम यह संकल्प लें कि प्रकृति को केवल साधन नहीं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, पर्यावरण की सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती छोड़ने की जो कोशिश है वो हम करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो याद रखिए कि ओजोन की रक्षा धरती की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ दोस्तों, एक सामान्य नागरिक ओजोन परत की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, ये भी एक प्रश्न है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पर्यावरणीय समस्या के सामने हमारे छोटे छोटे प्रयास क्या ही मायने रखेंगे। लेकिन श्रोता साथियों, बदलाव अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पुराने कूलिंग उपकरण को खुले में फेंकने के बजाय अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से नष्ट या रिसाइकिल करवा सकते हैं। अनावश्यक ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं साथियों, और बच्चों और युवाओं को ओजोन परत के महत्व के बारे में भी हम बता सकते हैं। साथ ही अंजलि जी, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों और जिम्मेदारियों का पालन भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की नियमित सर्विस आप करवाएं ताकि उनमें से गैसों का रिसाव न हो और हमारी ओजोन परत को कोई नुकसान भी न हो।
0: बिल्कुल कशिश, ओजोन दिवस की चर्चा को समाप्त करते हुए एक बात तो विशेष रूप से समझना जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा केवल किसी एक दिन की गतिविधि नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: 16 सितंबर हमें एक अवसर देता है कि हम अपने आसपास की प्रकृति और उस अदृश्य वायुमंडलीय व्यवस्था के बारे में सोचें जिस पर पृथ्वी पर जीवन निर्भर करता है।
1: बिल्कुल,
0: ओजोन परत हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे छू नहीं सकते और सामान्य जीवन में शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। फिर भी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से धरती की रक्षा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल,
0: यही बात हमें प्रकृति के बारे में एक गहरी सीख देती है।
1: जी हाँ।
0: हर जरूरी चीज हमेशा हमारी आंखों के सामने दिखाई दे ये जरूरी नहीं। हमारे गांव में भी प्रकृति के साथ ऐसा ही रिश्ता है।
1: जी
0: खेत
1: हाँ।
0: की मिट्टी, बारिश का पानी, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज और और स्वच्छ हवा, इनका महत्व हमें अक्सर तब समझ आता है जब इनमें कमी होने लगती है। असली पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना और आने वाले समय के बारे में सोचना भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि विश्व ओजोन दिवस को लेकर ढेर सारी बातें गीत से पहले हम जान पाए थे, यही आपको बताना चाहेंगे अंजलि जी, हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि विश्व ओजोन दिवस हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है।
1: बिल्कुल।
0: पहला तो ये कि पर्यावरण की समस्याएं सीमाओं में बंदी नहीं होती, एक देश में पैदा हुई समस्या का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा ये कि विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। तीसरा ये श्रोता साथियों कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें उद्योगों, वैज्ञानिकों, किसानों, विद्यार्थियों और साथ ही साथ आम नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: और चौथा और अंतिम संदेश ये कि आज की पर्यावरणीय जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। हम कह सकते हैं श्रोताओं की ओजोन परत हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका महत्व हमारे हर सांस लेते में छिपा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और कितना अनमोल है। इस विश्व ओजोन दिवस पर हम सबको लेकर श्रोता साथियों से पर्यावरण की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को अपनाने का संकल्प भी लेना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ओजोन की रक्षा जीवन की सुरक्षा, स्वच्छ आकाश, सुरक्षित भविष्य और सबसे महत्वपूर्ण, पृथ्वी हमारी संपत्ति नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे गाँव में भी प्रकृति के साथ ऐसा ही रिश्ता है। खेत की मिट्टी, बारिश का पानी, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज और स्वच्छ हवा, इनका महत्व हमें अक्सर तब समझ आता है जब इनमें कमी होने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना भी है।
0: जी हाँ।
1: आज जरूरत है कि ओजोन दिवस की जानकारी जो है वो बच्चों, युवाओं तक भी पहुंचे।
0: बिल्कुल।
1: स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब यह समझेगा कि उसके ऊपर मौजूद वायुमंडल भी उनके जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है, तो उनके भीतर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी।
0: जी हाँ।
1: वही बच्चा आगे चलकर अपने परिवार और समुदाय को भी जागरूक कर सकता है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं हो सकता। वैज्ञानिक शोध, जिम्मेदार उद्योग, प्रभावी नियम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नागरिक जागरूकता, इन सभी की अपनी भूमिका है।
0: बिल्कुल।
1: ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास इसी सामूहिक सोच का उदाहरण है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि विज्ञान और प्रकृति को समझकर ही हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: किसी पर्यावरणीय समस्या को केवल डर के रूप में देखने के बजाय उसके कारणों को समझना, सही जानकारी प्राप्त करना और समाधान का हिस्सा बनना अधिक जरूरी है। आज जब हम कशिश अपने घर लौटे तो अपने बच्चों से एक छोटी सी बात जरूर करें। उन्हें बताएं कि आसमान केवल बादलों और तारों का नाम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर वायुमंडल की ऐसी परतें भी हैं जो धरती पर जीवन को सुरक्षित रखने में योगदान देती है।
0: बिल्कुल।
1: आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा सबसे बड़ा उपहार केवल धन या संपत्ति नहीं, बल्कि स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित प्राकृतिक संसार भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए ओजोन दिवस को सिर्फ एक किताब या तारीख बनाकर न छोड़ें, उसे पर्यावरण के प्रति अपनी समझ बढ़ाने का अवसर बनाएं, क्योंकि जब जानकारी जागरूकता में बदलती है, जागरूकता जिम्मेदारी में बदलती है, जिम्मेदारी सामूहिक प्रयास बनती है, तभी उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देता है।
0: जी हाँ।
1: अंत में श्रोता साथियों बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आसमान की अदृश्य ढाल को समझें, प्रकृति के हर संतुलन का सम्मान करें, आज पर्यावरण के लिए जागरूक बने ताकि कल हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित संसार में सांस ले सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का और बातें भी ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: जी जी।
0: तो दोस्तों, विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि अंजलि जी हमें ये पता चल सके कि आज जिस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें रही है विश्व ओजोन दिवस को लेकर, वो बातें हमारे दोस्तों को कैसी लगी।
1: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: बिल्कुल।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: नमस्कार।
0: साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला रोज़ाना हमारा आपके साथ बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है, आपको हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहाँ से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहाँ का आपको नाम लिखना है, और साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। तो साथियों हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि सुबह के 11 बज चुके हैं और फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है, तो मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों पहली फरमाइश आई है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है कुर्बान, गीत के बोल हैं, तो जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ आऊँ नदिया किनारे।

फरमाइश करता है, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देविका चौधरी जी। इसी बीच बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं जगमोहन सिंह पदापत, मुनीश देवी, भारती अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी जी, सुधीर नूतन, रामनंद कश्यप जी, और दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान, आसिफ अली खान। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये धरती चांद सितारे। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे भी चाहिए है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फरमाइश करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकट शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन जी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। इसी बीच और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगी इन श्रोता साथियों की फरमाइश का गीत है, फिल्म का नाम है पत्थर के फूल। गीत के बोल हैं, कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, गंजुड़वारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनुंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ जी, गाजियाबाद से शिषपाल अकेला, तेजपाल प्रजापति जी। साथ ही जुड़ रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, कभी तो छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगले फरमाइश के गीत की। और अगले फरमाइश का गीत हमारे बीच पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया है। साथियों, फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी, मैं खिलाड़ी खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल हैं, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा, राजेंद्र मनहरण वर्मा जी। और भी हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन कोरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। जुड़ना चाह रहे हैं अजित कसना, मायादेवी, ऋतिकादित्य कसाना, लदावली मुरादाबाद से। और भी दोस्त हैं बोरखड़ा पित्रामल से हैं विणो मोड़न, देहा जैन, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मोड़त जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही भरा सा गीत था, इस गीत के बाद मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है यवतमाल करंजी रोड से। फिल्म का नाम है रोटी और गीत के बोल हैं गोरे रंग पहना इतना गुमान कर। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। फरमाइशकर्ता हैं मंजू लोखंडे, रामहरी लोखंडे, सूरज लोखंडे जी, और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मन करना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोम, मानस राज। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया जी। मलयान सरदना मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जी वी एम जैन, आदि जैन, अंश जैन, पवे जैन, अंशिका जैन। खुशूस जुड़ना चाह रहे हैं खंडवा से खुशनसीब जी, अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियालुक, अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, उमर डावर। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं सालिया डावर, हलीमा डावर, जिक्रा डावर, आयशा खत्री, फातिमा खत्री, तबस्सुम खत्री जी। खंडवा से शेख रहीद सही और अनस भाई जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है उमेरखेड़ महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है, आपको बताना चाहूंगी, मैंने प्यार किया। गीत के बोल है, मेरे रंग में रंगने वाली। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कमहाड़कर, राही सरिता कमहाड़कर, प्रणीता सिद्धांत कमहाड़कर, प्रिंस एकांश कमहाड़कर और अर्जुन कमहाड़कर टुकटुक जी। और भी अकोला से जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड से सुजला देवी मंदुरकर, सुदाना मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर। यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सैयद मसूर, साइना हसन, अक्सर नाजमा, आफिया इब्राहिम, सद्दाम जी। कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रतिमेश चंदन, संतोष पांडुरंग कुम्हार जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी। साथी जुड़ रहे हैं मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयन पाल, जहिन पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। मधुबनी बिहार से अरविंद्र कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या निवेश, नियति कुमारी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, मेरे रंग में रंगने वाली। तब तक आप बने रहिएगा वगर रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है साथियों। सौतन गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में दादरी गीत भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा और भी हमारे साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद यादव, सोनल यादव, बेबी सिया यादव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ, संगीता यादव जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार से अरविंद्र कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत की बोल है शायद मेरी शादी का ख्याल। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की और अगली फरमाइश आई है पथरिया छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है राज, गीत के बोल हैं सोनियों। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, गंगोला से हैं इसरत खान, शायरा बेगम रहफूत खान, सबरिन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान और ईशान खान। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूँगी इंदौर मध्य प्रदेश से ललिता खर्चे, नारायण खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे। साथी जुड़ना चाह रहे हैं सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चनाताई गुणा ने, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभा पद्माकर जी। और भी श्रोता साथी हैं जुड़ रहे हैं मोहाली पंजाब से हैं बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशा ने, निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं सोनियों। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश जो है 11 से 1 बजे तक चलता है। इसी बीच आप अपनी फरमाइशों के गीतों को सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप SMS कर सकते हैं। प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फ़ोन नंबर पर, हमारा फ़ोन नंबर है 9414802643। तो श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। गीत के बोल हैं, एक डाल पर तोता बोले। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के नादेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। जराफाबाद से हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, सचिन प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी, प्रणाली देशमुख। हरियाणा से है बिट्टू भाटिया, रजत भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाटिया। अनुरोध करता है साथियों। डोली लोहारा से है डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, एक डाल पर तोता बोले।

साथियों, भी हमने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीत की बोल है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। फरमाइश करता है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। पंजाब नवाशहर से हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, प्रीमियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। पाटावरा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मनोत्रा, नीटू लक्ष्मणोत्रा, लाडू कोयल मनोत्रा, पापाजी नानक चंद मनोत्रा। रोहतंग से है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। तो आइए साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है गुलामी। गीत की बोल है ज़िहाल मस्नी ने। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और सुबीर कुमार ने। फरमाइश करता है इस गीत के आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए के, संजीव डाबे राव और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। साथियों, फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, सोंगा छत्तीसगढ़ से हैं, ये बिहार से हैं। एमडी शाबिर परवाना, एमडी शाजिद अली, एमडी जाहिद अली, एमडी शाहिद अली। कलारोन से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा और मयंक शर्मा। हरिद्वार उत्तराखंड से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, हेमराज जहां। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है गीत के बोल हैं साजन जी घर आए, फरमाइश करता है इस गीत की। दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजकौर पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवे, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। महाराष्ट्र से है पीएस, निर्मला, विशाल, नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष। फाजिलका पंजाब से है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा। वासिम महाराष्ट्र से है मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि सुरोशी, मायरा सुरोशी। शिवाजी चौक कटनी से है अनिल, अमृत, दिलीप, राजू, रंजन, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना, हनी, यश और सौम्या। अमरावती से है श्याम कीटे, वंदना कीटे। सरगांव छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक की आवाज़ में, इसी बीच अगली फरमाइश आई है, हमको तुमसे हो गया है प्यार। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। फरमाइश करता है इस गीत की टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञा संगई, प्रीतेश संगई, पूरा संगई परिवार। चोखुंटी बुलंदशहर से हैं मुंबशीद अब्बासी, निकसपरिन अब्बासी, सनवाज अब्बासी, सफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और भी दोस्त हैं जो इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मोहल्ला पाटिल से हैं मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश भट्ट। जुड़वारा उत्तर प्रदेश से हैं अफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी और आलिया अंसारी। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोम साय राजवाड़े, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को।

0: साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं देवाओ देवा फिल्म का नाम से, नाम है हमसे बढ़कर कौन। फरमाइश करता है इस गीत के एकता कॉलोनी रोहतांग से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। अनुरोध करता है साथियों इसी गीत के साथ जुड़ने वाले धनुरी तेलीवाला से हैं निशार सलमानी, नुशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। गंजडोडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनास, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव। झारखंड से हैं एमडी यासीन अंजाना, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिसरा नाज और बेबी चाहत। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय कुमार शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू। नई दिल्ली से हैं इंद्र सिंह छाबड़ा, रविंद्र छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, शमा अंसारी, माहिनूर अंसारी, शमशाद भाई, टिसुआ वाले। पराली छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवागन, दुर्गा प्रसाद देवागन, पराग टेलर, पूनाराम देवागन, कृष्णा देवागन। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं देवाओ देवा।
1: प्रभु मेरे

0: वचनों में हमसे बढ़ कर
1: हमसे बढ़ कर सेवा हो सेवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे

बबला भगत भी मिलते हैं, भेद बदल करते भक्तों।

0: साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है नमक हलाल, गीत की बोल है पग घुंघरू बांधी। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार ने। फरमाइश करता है इस गीत की, दुलापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इशरार, नरगिस खातून। लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से है कमलकांत मरावी, परमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। तेलीबारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, श्रीमती करुणा शिवास, आयुष शिवास, विवेक शिवास, आयुषी शिवास, मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। मुजफ्फर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं चनुलाल शिवास, अनिता पुष्पा शिवास, अंजू योगिता शिवास, रंजू शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सविता देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानू शानू बब्बन, मुनू काना ठाकुर, हरिप्रिया, हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा निशा नामदेव, चन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, गीता श्रीवास, बेबी वेदई जोशी, बेबी हंसिका जोशी। छत्तीसगढ़ से हैं पूनम नायडू जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को, यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।
1: Mm-mm-mm-mm.

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल।

के पग घुंघरू पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी पग घुंघरू बाद मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के

क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है। अरे छोड़िए इन बातों से, हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो, हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाना।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही

श्रोता साथियों बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज़, यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता।

प्रस्तुत करता हूँ गी जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी अंजलि पारोशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारी रेडियो साथी कशिश पारोशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8:00। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं। कार्य करते हैं तो थकान की अनुभूति होती है, और यदि थकान ना उतरे तो कार्य करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, है ना? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों है? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार्य कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतिपल आनंद मना रहे हैं। और जब आप आनंद मनाते हैं तो थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, या जो कार्य आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो। सफलता आपको मिलेगी। कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है? जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है।

और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है, अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक क्षण है। उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया उसका दुख मनाना है या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है, सब कुछ करने के लिए यही एक क्षण है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे।

0: आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आयत की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलेस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
3: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: सेहत नु राज हूं है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हम बात करने वाले हैं, स्वयं को जानना भी एक सफर है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जब हम जीवन की बात करते हैं तो अक्सर हम सफलता, रिश्तों और बाहरी उपलब्धियों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूट जाती है कशिश, और वो है स्वयं को जानना।
0: बिल्कुल,
1: ये एक ऐसा सफर है श्रोताओं जो किसी मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा खुद को समझने और स्वीकारने की यात्रा है। ये सफर आसान नहीं होता श्रोताओं, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थों में बदल जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में हम साथियों को पहले गीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना दोस्तों को पहले कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज के कार्यक्रम का विषय है स्वयं को जानना भी एक सफर है। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि हम जिंदगी भर दुनिया को समझने में लगे रहते हैं। कभी हम रिश्तों को समझते हैं जागृति जी, कभी हालात को, तो कभी दूसरों के स्वभाव को।
1: जी हाँ।
0: लेकिन दोस्तों, क्या हमने कभी खुद को समझने की कोशिश की है? आज हम उसी अनदेखे, अनकहे और बेहद खास सफर की बात कर रहे हैं साथियों।
1: जी हाँ।
0: जो बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, स्वयं को जानना सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है साथियों, जिसमें कोई नक्शा नहीं होता और कोई मंजिल तय नहीं होती। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपने सपनों, साथ ही अपनी असल पहचान को भी पहचान पाता है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं जागृति जी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, यही हमारे मन में चलता रहता है। इन सब के बीच में हम अपने असली मैं को कहीं खो देते हैं जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को यही बता रहे हैं, जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मैं क्यों खुशी और दुखी के बीच में सफर करता रहता हूँ, तभी श्रोता साथियों इस सफर की असली शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, जीवन की शुरुआत में हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। बचपन में माता पिता, फिर शिक्षक और आगे चलकर समाज हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोताओं, और एक ऐसा व्यक्तित्व तो बना लेते हैं जो दूसरों को पसंद न आए। इसलिए कहा गया है कि दूसरों की छवि में ढलकर नहीं बल्कि अपनी पहचान में खिलकर जीना सीखिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि स्वयं को जानने का सफर तब शुरू होता है श्रोताओं, जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी कमजोरियाँ और ताकतें क्या है। ये आत्मचिंतन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है कशिश, जैसा कि अभी आपने बताया था। और जब हम ईमानदारी से खुद को देखने लगते हैं तो हमें अपनी असलियत का एहसास होता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि इस सफर में आगे बढ़ने के लिए आत्मचिंतन सबसे पहला कदम हमारे श्रोता साथियों के लिए हो सकता है। वो कैसे? तो दोस्तों, जब हम थोड़ी देर अकेले बैठते हैं, अपने विचारों को समझते हैं और अपने फैसलों का विश्लेषण करते हैं, तभी हम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हैं जागृति जी।
1: बिल्कुल।
0: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो खुद को समय नहीं देता, वह कभी खुद को समझ भी नहीं पाता है। इसलिए श्रोता साथियों, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही इस सफर में गलतियां भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां जागृति जी हमें हमारी सीमा और हमारी असलियत की पहचान करवाती है।
1: बिल्कुल।
0: जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी हम साथियों खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए गलती करना कमजोरी नहीं है बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना ही असली ताकत है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया ने इस सफर को और कठिन बना दिया है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद उनसे तुलना करने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमें लगता है कि हम उनसे कम हैं और इसी सोच में हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन श्रोताओं, सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी यात्रा भी अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: कहा गया है कि तुलना नहीं बल्कि पहचान ही असली सफलता होती है। स्वयं को जानने के सफर में असफलताएं भी एक अहम भूमिका निभाती है कशिश।
0: बिल्कुल।
1: जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और यही असफलताएं हमें सिखाती है कि हम कहाँ कमजोर हैं और हमें क्या सुधार करना होगा। इसलिए श्रोताओं, असफलता से हमें डरना नहीं है बल्कि उसे एक शिक्षक के रूप में हमें अपने जीवन में अपनाना है। हम देखते हैं कशिश, ये बात हम बार बार हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि अगर हम जीवन में असफल हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, लेकिन उसे हमें डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, बल्कि उस सफलता को हमारा शिक्षक मान लेना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे श्रोता साथियों को बताई। तो जैसा कि हम बातें कार्यक्रम के माध्यम से कर ही रहे हैं, ये बातें हमारी आगे भी और होंगी। लेकिन अभी मनोरंजन क्यों ना एक और गीत के साथ श्रोता साथियों को करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, स्वयं को जानना भी एक सफर होता है। ये वाक्य बहुत सही है श्रोता साथियों कि स्वयं को जानना बहुत बड़ा सफर होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा जीवन ऐसे निकाल देते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते हैं, और दूसरों को खुश करने के लिए हम अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को जानिए, उसके बाद दुनिया को जानिए। क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे तब तक हम दुनिया को नहीं जान पाएंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि दोस्तों, अपनी भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम खुद ये नहीं समझ पाते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। गुस्सा है हम, दुखी है हम, खुशी में है या डर में। दोस्तों, जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है जागृति श्रोता साथियों से कि खुद को जानने का मतलब है अपने दिल की आवाज सुनना।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, हर इंसान अलग होता है, उसके सपने भी अलग होते हैं, लेकिन अक्सर हम दूसरों के नकल करते करते अपनी पहचान खो देते हैं। ऐसे में स्वयं को जानने का सफर हमें ये सिखाता है जागृति जी

0: हमें किसी और के जैसा नहीं बनना है बल्कि खुद का सबसे अच्छा रूप बनना है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ श्रोता साथियों हम आपसे कहना चाहेंगे कि स्वयं को जानने का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और उनके साथ बेहतर तरीके से जीना सीखें। ये सफर हमें विनम्र बनाता है, हमें सिखाता है कि हम हमेशा सीखते रह सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी होता है कशिश। स्वयं को जानना कोई एक दिन का काम नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो पूरे जीवन चलती रहती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें हर दिन अपने अनुभवों से सीखना होता है कि खुद को बेहतर बनाना कैसा है। श्रोताओ, धीरे धीरे ही सही लेकिन खुद की ओर बढ़ते रहिए तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि खुद को जानने का सफर कभी आसान नहीं होता।
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी साथियों हम खुद को समझने में सालों लगा देते हैं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती ये है कि यह कोई रेस नहीं बल्कि एक धीमी गहरी और सच्ची यात्रा है।
1: जी हाँ
0: श्रोता साथियों, जब इंसान खुद को जान लेता है तब वह आत्मविश्वासी बनता है, फैसले लेने में मजबूत होता है जागृति जी, और दूसरों के प्रभाव में भी कम आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह खुश रहना सीख जाता है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि दोस्तों अब वह यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है श्रोता साथियों कि स्वयं को जानना भी एक सफर है और ये सफर शायद कभी खत्म नहीं होता। हर दिन हम खुद का एक नया रूप देखते हैं, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है श्रोता साथियों। तो क्यों ना हम इस सफर को अपनाएं और खुद से दोस्ती करें और अपने अंदर झांके, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत खोज खुद को खोज लेना होता है।
1: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि स्वयं को जानने का ये सफर हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: हम अपने भीतर ही शांति और संतोष पा लेते हैं, यही जीवन का असली उद्देश्य है। साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष पाना चाहते हैं तो इस सफर की शुरुआत आज ही करें। खुद से मिलिए, खुद को समझिए और खुद को अपनाइए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ अपने मूल्यों को भी पहचानिए श्रोता साथियों, क्योंकि हर इंसान के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सम्मान और सच्चाई। दोस्तों जब आप अपने मूल्यों को समझते हैं तो आपके फैसले अपने आप ही सही दिशा में जाने लगते हैं। एक सबसे जरूरी बात यहाँ पर आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि खुद को जानना एक मंजिल नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि पूरी जिंदगी चलने वाला एक सफर है। हर उम्र में हर अनुभव के साथ आप खुद को एक नई तरीके से समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि खुद को समझना कोई किताब पढ़ने जैसा नहीं होता जागृति जी, ये तो एक एहसास है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुलता है।
1: बिल्कुल कशिश, तो साथियों याद रखिए, जिंदगी किसी और की कहानी नहीं, हमारी अपनी कहानी है, और इस कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय तब शुरू होता है जब हम खुद को समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब हम भीड़ से अलग होकर अपनी आवाज सुनते हैं, अपने दिल की बात मानते हैं और अपने सपनों को पहचानते हैं। हो सकता है कशिश इस सफर में हमें अकेलापन महसूस हो, लोग हमें समझ न पाए श्रोताओं, या कभी कभी हम खुद भी उलझ जाए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यही तो असली सफर है, क्योंकि जब हम खुद को खोजते हैं तब हम धीरे धीरे एक मजबूत आत्मविश्वासी और सच्चे इंसान बनते जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों आज आप एक छोटा सा कदम उठाइए खुद के लिए, खुद से सवाल पूछिए कि मैं सच में क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, और फिर उस जवाब के पीछे चलने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो मंजिलें खुद करीब आ जाती हैं, और जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तो पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि खुद की तलाश में निकलिए, क्योंकि जो खुद को पा लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत, आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई एन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
1: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
0: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, लेकर हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित भोजन और स्वस्थ बचपन को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, जब हम बच्चों के पोषण की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले दूध, दाल, हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक भोजन का ख्याल आता है। लेकिन क्या केवल अच्छा खाना खिलाना ही बच्चे के अच्छे पोषण के लिए पर्याप्त है? अगर बच्चा पौष्टिक भोजन तो खा रहा है लेकिन पानी साफ नहीं है, घर का वातावरण गंदा है, खाना खुले में रखा हुआ है या खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाते, तो इसका असर बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए आज की हमारी बातचीत केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे कि स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित पानी, साफ सफाई और भोजन की सुरक्षा का बच्चों के पोषण से क्या संबंध है। जी हाँ श्रोता साथियों, बातें हमारी ढेर सारी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़े जा रहे हैं उसके आसपास है, तो उसकी आंखों में जलन होना, उसका सुनने की जो क्षमता है उसके कान सीधे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो है वो जैसे आजकल गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। गाड़ी के हॉर्न, गाड़ी का धुआं, धूल मिट्टी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बच्चे को प्रभावित करती है, और ये पूरा श्वसन संबंधी इससे समस्याएं पैदा होती है, खास करके अस्थमा है, हवा में सांस लेने से बच्चों में अस्थमा, खांसी, घबराहट, ये सारी चीजें उस पर हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डालता है और बच्चा फोकस्ड नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या यह थी बच्चा फोकस नहीं रह पाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही जानना चाहूंगी कि सुरक्षित पानी क्यों हमारे लिए जरूरी है?
0: पानी तो मतलब जल तो हमारा जीवन है, हम जल को, जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है, और पानी यदि सुरक्षित नहीं है तो ज्यादातर जो हमारी बीमारियां होती है वो पानी से ही होती हैं। दूषित पानी से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैजा, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, ये सारी खतरनाक बीमारियां होती हैं, और यदि पानी सुरक्षित है तो ये हमारा जो शरीर है उसके टेम्परेचर को बहुत नियंत्रित करता है। खास करके गर्मी के दिनों में हम देखते हैं कि हमें बहुत पसीना होता है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो सुरक्षित और स्वच्छ पानी यदि हम बार बार पी रहे हैं तो हमारा ये तापमान, शरीर के अंदर के तापमान को भी कंट्रोल करेगा, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, और खास करके यदि हम कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो हमें स्वच्छ और सुरक्षित पानी बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर,
0: और हमें हमारे शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में और बार बार पानी पीना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने पानी क्यों जरूरी है इसको लेकर हमें बहुत अच्छी बात से अवगत करवाया है, यही हम देखते हैं कि गंदे वातावरण में रहने से कई सारी बीमारियां हो जाती है, तो कौन कौन सी बीमारियां हमें गंदे वातावरण में रहने से होती हैं?
0: देखिए, गंदा वातावरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहे शहर हो या गाँव हो, ये गंदा वातावरण इससे बचा हुआ नहीं है, और गंदे वातावरण से डायरिया एक बहुत आम बीमारी है, टाइफाइड हो जाता है जो कि गंदे पानी से ही होता है, दूषित खान पान से होता है, पीलिया बीमारी वैसे तो बहुत छोटी बीमारी कही जाती है, लेकिन ये सीधा इसका असर लीवर पर होता है, और लीवर डैमेज होने से कई बार आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ये अस्थमा, श्वास रोग, ये भी सारी धूल कचरा, ये कहीं ना कहीं गंदे वातावरण से ही ये सारी बीमारी, संक्रमण हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हमें गंदे वातावरण से हो जाती हैं।
1: जी हाँ, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि स्वच्छ रसोई भी पोषण का हिस्सा है?
0: देखो, जो हमारी रसोई है यानी कि वो एक प्रकार से उसका स्वच्छता से बिल्कुल सीधा संबंध है। जहाँ हमारी माँ, हमारी बहन घर में जहाँ खाना बन रहा है, खाना पकाते हैं, वहां पर यदि स्वच्छता नहीं हो तो ये बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाता है। यदि स्वच्छता नहीं होगी तो मक्खी, मच्छर, ये तमाम चीजें होंगी। हालांकि स्वच्छता का मतलब सीधा संबंध विटामिन प्रोटीन से नहीं है, लेकिन स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिकता से भी है। हम किसी अस्वच्छ जगह पर यदि जाते हैं जहां पर मक्खियां भिनभिना रही हो तो ये सीधा हमारे मानसिकता पर असर डालेगा। इसके अलावा हमारे जो घर में जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हैं, यदि हम खाना पका रहे हैं तो इन सारी चीजों को धोकर के काम में लेना, इस स्वच्छता का भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सुरक्षित रहते हैं। और खास करके हमारी रसोई गंदी है, गंदे बर्तनों में यदि खाना बन रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर डालते हैं और पोषक तत्वों को दूषित करके हमको बीमार करते हैं। तो ये स्वच्छ रसोई होगी तो हमारा बीमारियों से बचाव होगा, हमें फूड पॉइजनिंग से हमारा बचाव होगा, डायरिया से, पेट की बीमारियों से, तो वायरस, बैक्टीरिया ये हम पे असर नहीं डालेंगे।
1: बिल्कुल, जैसा कि सर आपने बताया कि हमारी रसोई का स्वच्छ होना किस तरीके से जरूरी है, क्योंकि रसोई से भी पोषण का हिस्सा जुड़ा हुआ है। यही बात आती है कि भोजन को सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या हैं?
0: देखिए, भोजन को सुरक्षित रखने के बहुत सारे उपाय हैं, और उन उपायों की बात करें तो सबसे पहले तो उसमें आता है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो करके भोजन के सुरक्षा के, पहले हमारी स्वच्छता और फिर भोजन की सुरक्षा, हम अच्छे बर्तन धो करके, हाथ धो करके हमारा जो भोजन है उसको बर्तन में निकाले करें, और उसको व्यवस्थित तौर पे सफाई वाली जगह पे रखें और उसको ढक के रखें, मतलब भोजन को ढक के रखना बहुत आवश्यक है। और भोजन जब हम कर रहे हैं तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक लेवल तक वो

0: गर्म खाना हो, क्योंकि ठंडा भोजन भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पे सीधा असर करता है। और यदि गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिनों में भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसको भोजन को 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद हमको फ्रिज में रख देना चाहिए। और यदि घर में फ्रिज नहीं है तो हवा वाली जगह पे जहाँ पर वो सुरक्षित रहे, इस चीज को भी हमको बहुत ध्यान रखना आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, यही अब जानना चाहूंगी कि खुले में रखा गया जो भोजन है वो किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है।
0: देखिए, आए दिन हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि विवाह में भोजन से बीमारियां हो गई, इतने लोग बीमार हो गए, इतने लोगों को दस्त उल्टी हो गए, ये सारी चीजें। मेले में खुले में भोजन करने से या खुले में नाश्ता करने से फूड पॉइजनिंग हो गई, ये सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो खुले में भोजन रखने से तो बिल्कुल हमको बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। यदि भोजन खुले में पड़ा होगा तो मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगे, धूल, ये सारी चीजें भोजन को प्रभावित करेंगी और इससे फूड पॉइजनिंग होगा, पेट में संक्रमण होगा, उल्टी दस्त होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इससे बैक्टीरिया भी बहुत तेजी से फैलता है, सूक्ष्म जीव जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उससे शरीर को नुकसान होता है। और इससे खुले में भोजन रखने से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं, उसका स्वाद नष्ट हो जाता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि हाथ धोने की आदत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी हम कई बार लापरवाही कर देते हैं, तो ये क्यों जरूरी है?
0: देखिए, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये कहना पड़ता है कि हाथ धो करके भोजन करना चाहिए, ये कहना पड़ता है कि हमें बार बार हाथ धोने चाहिए, इसके लिए अभियान चलाया जाता है। सचिन तेंदुलकर जैसी सेलिब्रिटी जो है वो हाथ धोने का विज्ञापन करती है, तो ये चीजें जो है वो हमारे डीएनए में समा जानी चाहिए कि हमें भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, पानी पीने से पहले अच्छी तरह से हाथ को धोना है, ये हमारी आदत में शुमार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर में हम इधर उधर बहुत सारी जगह पर घूमते हैं तो हमारे हाथों में संक्रमण हो जाता है, और कई बार जब हम जैसे टेबल पे काम कर रहे हैं तो टेबल को कई बार हमारी एक आदत हो गई कि हाथ से हम टेबल को साफ कर लेते हैं, और उसी हाथ से यदि हमने नाश्ता कर लिया, उसी हाथ से हमने भोजन कर लिया, तो ये सारी चीजें हमारे पेट के अंदर जाएंगी और कहीं ना कहीं ये हमको बीमारियां कर देंगी। तो हाथ धोना यानी कि ये बीमारी से बचने का सबसे सस्ता और बहुत आसान उपाय है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि कार्यक्रम में हम जान पाए कि हाथ धोने की आदत क्यों जरूरी है, यही अब मैं जानना चाहूंगी, स्वच्छ गांव और स्वस्थ बच्चों का क्या संबंध है?
0: हाँ, स्वच्छ गांव और स्वस्थ बच्चा। देखो, गांव स्वच्छ रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। गांव की सफाई बहुत आवश्यक है। हम प्रायः देखते हैं गांव में पशु पालक होते हैं, गांव में लोग खुले में आज भी शौच जाते हैं, गांव में घर के आंगन में घास फूस होती है, घर के आंगन में गंदगी होती है, तो ये बच्चे पे सीधा असर डालती है। तो गांव स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है, और गांव की स्वच्छता से सबकी स्वच्छता, और विशेष करके वो बालक जो अभी अबोध है, जो जानता नहीं है, जो समझता नहीं है कि मैं कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे को क्या असर पड़ेगा, मैं यदि जो है वो कहीं गंदे पानी में खेलूंगा तो इस पर मुझे क्या। कई बार बच्चा जो है गंदे पानी से भी खेल लेता है, गंदा पानी भरा रहता है, गड्ढे होते हैं, तो इन सारी चीजों का उसके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, इसलिए गांव का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल सर, यही अब अगला सवाल है मेरा कि हम पर्यावरण को लेकर, पोषण को लेकर बात कर रहे हैं, तो परिवार क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं ताकि ये दोनों चीजों का जो संबंध है वो संतुलित तरीके से बना रहे?
0: देखिए, परिवार बहुत छोटे छोटे कदम उठा सकता है, और इसमें माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों को बार बार यह जानकारी देवे कि हमें ढका हुआ भोजन करना चाहिए, हमें हाथ धो करके, हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ करके भोजन करना चाहिए, हमें भोजन करते समय साफ जगह पर बैठना है, हमें होटल में कुछ भी नाश्ता करने से, या ऐसी होटल जो बहुत गंदगी है, जहाँ बहुत गंदगी है, ऐसी जगहों पर जा करके कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए, हमें फास्ट फूड से भी बचना है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे पोषक तत्वों को नष्ट करता है, और पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये तमाम जो चीजें हैं उन चीजों के बारे में भी ध्यान रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
1: जी सर, यही स्कूल और आंगनबाड़ी की क्या भूमिका हो सकती है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्कूल और आंगनवाड़ी पोषक तत्वों के मामले में बहुत बड़ी भूमिका में है। आंगनवाड़ी वो जगह है जहाँ माँ और बच्चा दोनों की उपस्थिति रहती है, बच्चा जो है वो 6 महीने के बच्चे से लगाकर 6 वर्ष तक का बच्चा जो है गांव में आंगनवाड़ी में रहता है, और यहाँ पर उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाता है, न सिर्फ बच्चे के बल्कि माँ के बच्चे का। गर्भवती महिलाएं भी वहाँ पर जाती हैं, उनको वहाँ पर पौष्टिक आहार वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती, पौष्टिक आहार दिया भी जाता है, और वहाँ पर समय समय पर जो स्वास्थ्य विभाग से बिल्कुल संपर्क रहता है, और वहाँ पर बच्चों को और माताओं को टीकाकरण किया जाता है समय समय पर। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इस एज ग्रुप के 6 महीने से लगाकर 6 वर्ष तक के, तो इनको वहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जाती है, खेल खेल में उनको बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। अच्छा, माताओं का जो स्तनपान है, उचित खान पान है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता है, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी में सिखाई जाती है। तो एक प्रकार से माँ और बच्चा हॉस्पिटल नहीं जाए तो आंगनवाड़ी एक प्रकार से मिनी हॉस्पिटल का काम करती है। जहाँ तक स्कूल की चर्चा करें तो स्कूल में मिड डे मील व्यवस्था है, बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, और वो जो भोजन है वो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए उसमें कि उसमें पोषण युक्त भोजन हो, गर्म भोजन हो, और बच्चा यदि वहाँ पर स्कूल में भोजन कर रहा है, पोषण तत्व है उसमें, बच्चे का उस भोजन के प्रति आकर्षण है, तो वहां पर एक फायदा यह भी है कि बच्चे की उपस्थिति स्कूल में बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: बच्चे की उपस्थिति बढ़ेगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यह असर पड़ेगा कि बच्चा शिक्षा की ओर प्रेरित होगा, और शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, ये हम सभी समझते हैं। जैसे जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें संतुलित आहार का ज्ञान दिया जाता है, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बातें बताई जाती हैं। अच्छा, स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य की जांच भी होती है, समय समय पर शिविर लगते हैं, वहां पर नर्स आती है, डॉक्टर्स आते हैं, आंखों की जांच होती है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, ये सारी चीजें जो है वो नियमित तौर पर स्वास्थ्य की जाँच होती है। तो स्कूल और आंगनवाड़ी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि पोषण और पर्यावरण को लेकर हमने ढेर सारी बातें आपके माध्यम से जानी, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं श्रोताओं को विशेष तौर पर यह बात बताना चाहूंगा, और खास करके मतलब बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में, कि हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ पर स्वस्थता है, स्वच्छ है व्यक्ति तो वो स्वस्थ है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। यदि हम हमारी काया को निरोगी रखना चाहते हैं तो स्वच्छता को हमें अपनाना होगा। और दूसरा, पोषण तत्वों के बारे में हमने ढेर सारी बातें कही, लेकिन संक्षेप में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो पोषण युक्त हो, बासी भोजन नहीं हो, और हम फल का, दालों का, सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि हमारा शरीर और खास करके नई पीढ़ी को लेकर के जो जागरूकता होनी चाहिए वो हमको उस पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि बच्चा यदि स्वस्थ है तो कहीं ना कहीं परिवार में स्वच्छता का एक वातावरण बनेगा। परिवार में स्वच्छता का वातावरण इसलिए आवश्यक है कि परिवार में बीमारियां फैलेंगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करेगा, और हम उसी बीमारियों से घिर करके रह जाएंगे, और परिवार का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा। तो यही संदेश है कि पोषण तत्वों का ध्यान रखें और स्वच्छता का भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी धन्यवाद।
1: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ जुड़े थे, और आज की बातचीत से एक बात साफ होती है कि पोषण केवल थाली में मौजूद भोजन का नाम नहीं है। स्वच्छ पानी, साफ हाथ, सुरक्षित भोजन, स्वच्छ रसोई और स्वस्थ वातावरण, ये सभी बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य की नींव है। तो श्रोता साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छी तरह पढ़ें और बीमारियों से बचे रहें, तो हमें उनकी थाली के साथ साथ उनके आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। घर में साफ पानी रखें, भोजन को ढककर रखें, रसोई को स्वच्छ रखें, खाने से पहले और शौचालय के बाद हाथ जरूर धोएं और अपने आसपास कचरा न जमा होने दें। ये छोटे कदम बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में बड़ी शुरुआत बन सकते हैं। तो आइए आज हम एक संकल्प लें कि पौष्टिक भोजन के साथ स्वच्छ वातावरण, तभी होगा बच्चों का बेहतर पोषण और स्वस्थ बचपन। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाइयों ने बोनो, जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती, माँ जंगल थकी जुड़ू बोनो रिश्तो है। जे जंगल में हमसे हैं इन्होंने रक्षा करे हैं, तो आओ बोलनी भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा। बोलनी आवाज विकास की असली पहचान है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपने रह या आपने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपने हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे
2: अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई ने बोलो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ओजोन परत की रक्षा, धरती की सुरक्षा को लेकर। अंजलि, हम जिस धरती पर रहते हैं वो केवल मिट्टी, पानी और पेड़ों से बनी जगह नहीं है, यह हमारा घर है, हमारी जरूरतों का आधार है श्रोताओं, और आने वाली पीढ़ियों की अमानत भी है।
0: बिल्कुल,
1: खेतों में लहलहाती फसलें, पेड़ों की छांव, स्वच्छ हवा, साफ पानी और खुला आसमान, ये सभी हमारे जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि धरती की सुंदरता और जीवन की सुरक्षा के लिए प्रकृति के उन अदृश्य सुरक्षा कवचों को समझना भी जरूरी है, जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: इन्हीं में से है एक ओजोन परत। आज हम बात करेंगे ओजोन परत के बारे में, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं ओजोन परत की रक्षा, धरती की सुरक्षा को लेकर। अंजलि, आसमान की ऊंचाई पर मौजूद ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से धरती की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक ढाल है। अगर ये सुरक्षा कवच कमजोर होता है तो इसका प्रभाव केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि गांव, खेत, जंगल, पशु पक्षी और मानव जीवन को भी प्रभावित करेगा।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए साथियों, ओजोन परत की रक्षा केवल वैज्ञानिक या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये वो हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यही सोच सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करती है। स्वराज का अर्थ केवल अपने फैसले लेने की आजादी नहीं है। सच्चा स्वराज तो तब है जब हम अपने गाँव, अपने पर्यावरण और अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बने।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है ओजोन परत क्या है। श्रोता साथियों, हमारे चारों ओर वायुमंडल की एक विशाल परत है।
0: बिल्कुल।
1: इसी वायुमंडल के एक हिस्से में ओजोन गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह धरती से काफी ऊपर स्थित है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों के एक बड़े हिस्से को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, ये हम सभी जानते हैं। सूर्य की रोशनी के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सूर्य से आने वाले

0: ये कुछ किरण जीवन जगत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ओजोन परत इन हानिकारक किरणों से एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसे धरती का प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि जब वायुमंडल में कुछ हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ती है तो ओजोन परत को नुकसान पहुंच सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अतीत में क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी कि CFC जैसे रसायनों का उपयोग कई प्रकार के रेफ्रिजरेशन और एरोसोल उत्पादों में होता है। इन रसायनों ने ओजोन क्षरण की समस्या को बढ़ा दिया है।
0: बिल्कुल,
1: वैज्ञानिक ने समय रहते इस खतरे को पहचानना और दुनिया के देशों ने मिलकर ऐसे पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
0: जी जी।
1: ये हमें एक बड़ी सीख देता है, जब पूरी दुनिया किसी पर्यावरणीय समस्या को समझकर मिलकर काम करती है तो सकारात्मक बदलाव संभव होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ओजोन परत कमजोर होने से धरती तक पहुंचने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है, और ये जो अत्यधिक यूवी विकिरण है वो मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता
1: बिल्कुल
0: है। श्रोता साथियों, इससे त्वचा आंखों से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है, इसलिए ओजोन परत की सुरक्षा वास्तव में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। जागृति जी, गाँव में हम देखते थे कि रहने वाले जो किसान है, खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, स्कूल जाने वाला जो बच्चा है, वो खुले वातावरण में काम करते हैं, और इन व्यक्तियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण होना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: अगर ये स्वस्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव इन सभी लोगों पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हम जैसे कि ओजोन परत को लेकर बात कर रहे हैं तो हमारे गाँव की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार खेती है, इसलिए पर्यावरण में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ होता है। फसलें सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है, लेकिन अत्यधिक हानिकारक यूवी विकिरण पौधों की वृद्धि और कृषि पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ओजोन परत की रक्षा केवल पर्यावरण का विषय नहीं श्रोताओं, बल्कि किसान और खेत के भविष्य का विषय भी है।
0: बिल्कुल।
1: एक किसान जिस तरह अच्छी फसल के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखता है, पानी को बचाता है और बीज की गुणवत्ता का ध्यान रखता है, उसी तरह पूरी धरती के स्वास्थ्य के लिए वातावरण की सुरक्षा भी जरूरी है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही बात करें सच्चा स्वराज और पर्यावरण का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम कहते हैं कि हमारा गांव जो है वो हमारा है, तो गांव की हवा को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम कहते हैं कि जल हमारा है, तो पानी को प्रदूषित न करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम कहते हैं कि जंगल हमारे जीवन का आधार है, तो पेड़ों और जैव विविधता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: और यदि हम कहते हैं कि धरती हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, तो वातावरण की सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यही जिम्मेदारी स्वराज को मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ओजोन परत के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये बातें निरंतर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम ओजोन परत के महत्व को लेकर ढेर सारी बातों को जान रहे हैं। यही बात करें तो हमारी छोटी छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिक भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपना सकता है। जैसे कि ऊर्जा की बचत, श्रोता साथियों, जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद करना चाहिए। ऊर्जा की बचत का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना भी है। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, जैसे कि पुराने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों को बदलते समय उनकी गैस और निपटान से जुड़े पर्यावरणीय जो पहलू हैं उनका हमें ध्यान रखना है। पेड़ केवल छाया नहीं देते, वे वातावरण को, श्रोता साथियों, संतुलित रखते हैं और स्थानीय पारिस्थिति को मजबूत रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए श्रोता साथियों, केवल पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक बचाना भी जरूरी है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि कचरे को खुले में जलाने की आदत पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। गीले और सूखे कचरे को अलग करना, पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को अलग रखना और कचरे का उचित निपटान करना हमारी जिम्मेदारी है। गाँव में उपलब्ध जल, जंगल, जमीन और जैव विविधता का संरक्षण करना पर्यावरणीय स्वराज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम देखते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत छोटी जगह से हो सकती है। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्कूल, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह और युवा मिलकर पर्यावरण संरक्षण की योजना बना सकते हैं। ग्राम सभा में चर्चा हो सकती है श्रोताओं कि गांव में कितने पेड़ हैं, कितने नए पौधे लगाए जा सकते हैं, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कचरे का प्रबंधन कैसे हो सकता है और लोगों को पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक किया जा सकता है। स्कूल के बच्चे भी पर्यावरण प्रहरी बन सकते हैं श्रोताओं। वे अपने घर और आसपास के लोगों को बिजली बचाने, पेड़ बचाने और कचरा न जलाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं अंजलि। युवा भी तकनीक का उपयोग करके पर्यावरण से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। महिलाएं भी घर में ऊर्जा, पानी और कचरे के बेहतर प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: जी जी।
1: इस तरह श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि पूरा समुदाय मिलकर पर्यावरण संरक्षण को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी बना सकता है।
0: जी हाँ जागृति जी, यही हम देखते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी जानकारी को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारा रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: रेडियो के माध्यम से हम जैसा कि सरल भाषा में श्रोता साथियों को बता रहे हैं कि ओजोन परत क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, तो श्रोता साथियों, यह जो जानकारी है वो वैज्ञानिक जानकारी के साथ में सरल भाषा तक आप लोगों तक पहुंचेगी। तो आशा करते हैं कि आप भी इन सारी बातों को समझेंगे और आप भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयास करेंगे। ओजोन दिवस हमें यह संदेश देता है कि हर वर्ष 16 सितंबर को यह जो दिवस हम मनाते हैं, इस दिन ही नहीं बल्कि हमें हर दिन छोटे मोटे प्रयास करके पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। जिस तरह किसान एक दिन खेत में बीज डालकर बाकी साल खेत को भूल नहीं जाता, उसी तरह पर्यावरण की रक्षा भी लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। 16 सितंबर हमें याद दिलाने का दिन है जागृति जी कि असली काम तो पूरे वर्ष हमारी आदतों और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, तो आपने बताया कि ओजोन दिवस हमें क्या संदेश देता है, साथ ही हम सामुदायिक रेडियो की भूमिका के बारे में भी बात कर रहे थे। तो साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि सामुदायिक रेडियो केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, ये समुदाय को जोड़ने और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी है और यही सच्चे स्वराज की आवाज भी है कि समुदाय अपनी बात समझे, अपनी जिम्मेदारी पहचाने और अपने भविष्य के लिए मिलकर निर्णय ले। साथ ही हम जानते हैं अंजलि कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी क्या है। तो आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं और जिस धरती पर खेती कर रहे हैं, वो केवल हमारी नहीं है श्रोताओं, हमसे पहले की पीढ़ियों ने इसे हमें सौंपा है और अभी से आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: जी जी।
1: हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षित भविष्य केवल अच्छी नौकरी या आर्थिक समृद्धि से नहीं बनेगा। साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ मिट्टी, हरियाली और संतुलित पर्यावरण भी उतने ही जरूरी है।
0: जी जी।
1: इसलिए विकास ऐसा होना चाहिए श्रोताओं जिसमें प्रकृति पीछे न छूटे।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि सच्चा स्वराज तब दिखाई देता है जब गांव अपने विकास के साथ साथ अपने पर्यावरण की भी चिंता करता है।
1: बिल्कुल।
0: जब ग्राम सभा में पेड़ और पानी की बात होती है, जब किसान मिट्टी की सेहत को अपनी खेती का आधार मानता है, जब बच्चे प्रकृति को अपना मित्र समझते हैं, जब युवा तकनीक का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करते हैं, जब परिवार बिजली और पानी की बचत को अपनी आदत बनाते हैं, इसी के साथ श्रोता साथियों, जब समुदाय मिलकर कचरे की समस्या का समाधान करता है तब स्वराज केवल किताब का शब्द नहीं रहता बल्कि हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि ओजोन परत हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। श्रोताओं, धरती की सुरक्षा के लिए दिखाई देने वाली सीमाओं से आगे सोचने की जरूरत है। आसमान में मौजूद एक अदृश्य परत हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी तरह हमारे छोटे छोटे फैसले धरती के भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम सोच सकते हैं कि मेरे अकेले बिजली बचाने से क्या होगा, मेरे एक पौधा लगाने से क्या बदलेगा, मेरे कचरा न जलाने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन श्रोताओं, बदलाव हमेशा एक कदम से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति से परिवार बदलता है, एक परिवार से मोहल्ला बदलता है, एक मोहल्ले से गांव बदलता है, और जब गांव बदलते हैं तो समाज बदलता है। और यही सच्चे स्वराज की ताकत है।
0: बिल्कुल,
1: ओजोन परत की रक्षा केवल आसमान की सुरक्षा नहीं है श्रोताओं, ये धरती के जीवन की सुरक्षा है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए हम ऐसा स्वराज बना सकते हैं जिसमें विकास के साथ प्रकृति भी सुरक्षित रहे, खेतों के साथ मिट्टी भी सुरक्षित रहे, गांव के साथ जंगल भी सुरक्षित रहे, और आज के साथ आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। क्योंकि धरती सुरक्षित होगी तभी जीवन सुरक्षित होगा, प्रकृति सुरक्षित होगी तभी गांव सुरक्षित होगा, और जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी सच्चे स्वराज का सपना साकार होगा।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए ओजोन परत की रक्षा करें, पर्यावरण बचाएं और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं।
1: जी हाँ, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो हमारे श्रोता साथियों को जरूर पसंद आई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलेस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। साथियों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी आता ही है, और वो है निराशा। साथियों, कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे प्रयास सफल नहीं हो रहे, हमारे सपने दूर लग रहे हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, निराशा केवल क्षणिक भावना है और इससे बाहर निकलने का रास्ता हमारे भीतर ही है। जब अंधेरा गहरा होता है दोस्तों, तो खुद पर भरोसा रखो, सूरज फिर उगेगा। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे साथियों कि निराशा से बाहर हम कैसे आए। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो सभी के जीवन में कभी न कभी आता है, और वो है निराशा। और निराशा से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों निराश होते हैं? बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं, या फिर कभी कभी परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं तो कभी हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, कभी हमारे पास सही मार्गदर्शन भी नहीं होता। लेकिन साथियों, निराशा जीवन का अंत नहीं है, यह केवल हमें सोचने और सुधारने का संकेत देती है। असफलता

सहारा केवल मार्गदर्शक होती है साथियों, लेकिन निराशा स्थायी नहीं होती। साथियों ध्यान दीजिए कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद अवसर भी तो आता है ना। कभी कभी ना साथियों हम बहुत छोटे परिणामों से निराश हो जाते हैं, लेकिन छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथियों एक बात बताइए कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आ रहे। यह सोच कर एक पल रुकिए और सोचिए कि कैसे आपने इस स्थिति से सीखा। जी हाँ दोस्तों, हर निराशा में छिपा होता है एक सीख और एक नया अवसर, जिसे बस हमें समझने की जरूरत होती है। यहीं मैं एक प्यारी सी छोटी सी कहानी है उसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि निराशा केवल एक चुनौती है, अवसर नहीं। जी हाँ श्रोता साथियों, एक युवक था रोहित। वह अपने करियर में बहुत उत्साही था, लेकिन लगातार असफल होता रहा। हर नौकरी में रिजेक्ट, हर प्रयास में विफलता। धीरे धीरे रोहित निराश हो गया। वह सोचने लगा दोस्तों कि शायद मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास एक मित्र था। उसने रोहित से कहा कि असफलताएं तुम्हारा अंत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें सही राह दिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। फिर दोस्तों रोहित ने अपनी गलती और स्थिति को समझा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपनी पसंद की नौकरी में सफल हुआ। तो साथियों ये हमें कहानी सिखाती है कि जो गिरकर उठना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमें भी हमारे जीवन में ऐसा ही करना चाहिए कि हमें हमारी जो असफलताएं हैं, हमारी जो स्थिति है, उनसे बहुत सारी सीख मिल सकती है। और जब हम हमारे जीवन की कठिनाइयों को समझ जाते हैं, हमारे असफलता के पीछे के कारण को समझ जाते हैं ना साथियों, तो हम उन सारी चीजों में सुधार कर जीवन में नए मार्ग अपना पाते हैं। यही श्रोता साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। अगर साथियों आप मेरी इस बात का जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। श्रोता साथियों आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मनोरंजन करवाना चाहूंगी आपको एक प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपसे सवाल किया ही था कि क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां निराशा के बाद आपकी मेहनत ने आपको सफलता दिलाई है। इस बात का जवाब श्रोता साथियों जब आप हमें देंगे ना, तो हमारे बहुत से दूसरे जो श्रोता साथी हैं, उन्हें भी अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करना और निराशा से किस तरीके से दूर रहते हैं ये सारी सीख मिल पाएगी। अब यही मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जिससे हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। साथियों, निराशा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है खुद पर भरोसा रखें, यानी कि आपकी ताकत आपकी सोच में है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, आपकी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो आप हर निराशा से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ जीवन में छोटे लक्ष्य बनाएं। हर छोटे कदम साथियों मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छे मित्र और अच्छे लोगों के साथ जुड़े ताकि आपका जो जीवन है वो भी अच्छा बना रहे। और श्रोता साथियों, जीवन की सबसे बड़ी जो बात है वो हर किसी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए, वो है धैर्य। धैर्य जिस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति जीवन की हर समस्याओं हर कठिनाइयों से दूर रह सकता है। साथियों, कहना चाहूंगी हर निराशा में छिपा होता है एक सबक और एक नया अवसर। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात ये आती है साथियों कि अंधेरा जितना गहरा होता है ना, रोशनी उतनी ही तेज दिखाई देती है। हर कठिनाई हमारी ताकत बन सकती है अगर हम चाहें तो। कभी कभी दोस्तों हमें लगता है ना कि रास्ता बहुत लंबा है, मंजिल भी हमसे बहुत दूर है और ताकत कम है। तब हमें ये याद रखना है कि हर सफल इंसान कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन उसने कदम रोकने के बजाय और मेहनत की। साथियों, जरा सोचिए कि यदि महान वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी और बिजनेस लीडर निराशा में ही रुक जाते तो आज हम उनके योगदान से वंचित रह जाते। इसलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो, कभी अपने प्रयासों को कममता को और कभी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जीतता वही है जो गिरकर भी उठता है। हमें ये भी सोचना चाहिए दोस्तों कि सफलता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सच यह है कि बड़ी मंजिल भी छोटे कदमों से ही पूरी होती है। हर दिन जब हम छोटा प्रयास करेंगे, हर छोटे कदम निरंतर रखते रहेंगे और उन चीजों से नई सीख लेते रहेंगे, तो हम सफल अवश्य होंगे। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि अपने जीवन में एक छोटा कदम क्या उठा सकते हैं जो आपकी निराशा को दूर करे और आपके सपनों को करीब ले जाए। क्योंकि साथियों, किसी ने क्या खूब ही कहा है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। खुद पर भरोसा ही आपको निराशा से बाहर ले जाएगा। खुद पर भरोसा ही आपको हर चुनौती का सामना करने का साहस देगा। जब आप सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, जब आप सोचेंगे कि कठिनाइयाँ केवल असर है, जब आप सोचेंगे कि हर गिरावट से मैं मजबूत बनूंगा, तो निराशा आपके पास टिक ही नहीं पाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि निराशा से हम दूर कैसे रह सकते हैं। बातें कार्यक्रम में ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाना चाहूंगी।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।